0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
0: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
2: सच बताऊं, सही लगता है, उसी की ही तो गलती थी
0: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
2: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
0: वरना कहते रह जाओगे
3: कहा